0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: Okay, sorry to cut you short, but guys, we've got so many that we
1: We're
0: have to
1: trying
0: like,
1: to go through
0: yes, Patsy.
1: as many.
2: तुझ देखा ते से नाना सनम आते होता है दीवानम तेरी रिचार्ज थी मोर।
1: थैंक यू
0: Oh
1: पैट्सी, थैंक यू। अप नेक्स्ट प्रकाशनी।
0: my word. Yep.
3: तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम।
1: थैंक यू प्रकाशनी फॉर दैट। अप नेक्स्ट इमेज।
0: एमएच।
4: तुझे देखा
0: देयर
4: तो
0: वी
4: ये
0: गो।
4: जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। आई सिंपली लव दिस सॉन्ग, इट्स अ टॉप सॉन्ग। आई एम जस्ट सिंगिंग इट टू दैट ऑक्स टंग इन द फ्रिज। वाह वाह एमएच।
0: एंड रानी फ्रॉम फिनिक्स।
5: तुझे

0: 88.2.
1: अरे मामा मामी, अरे काका काकी, अरे हम तो के अभी एक कहानी सुनाऊंगा। हाँ, एक कहानी सुनाऊंगा। अरे हम जब एक दिन रास्ता पर चला था तो हम एक लड़की के घर पहुंचा था। हाँ पहुंचा था, तो हम वहां पर गया था और देखा था उस लड़की बहुत सोच में था। तो हम पूछा है, ये लड़की काय के तू सोच में है रे? तो लड़की बोला, हम मालूम नहीं है कि हमारा माई बाप तो कहाँ गया है। तो हम बोला, अरे पगली, हम तो क्या बताता है तेरा माई बाप तो कहाँ गया थे। उस लड़की के पास बहुत सुंदर नाम था, उसके नाम मोनिका।